कराची खां खैबर पख्तून ताईं सिंध आहे। सिस्टम ख़राब थियण जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जे करे ई सिस्टम ख़राब थियो। मुआशी तबाहीअ में सूबनि जो को बि हथ न आहे।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
0: जो शहर जो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।

जी असां हिन प्रोग्राम रोशन सुबह में मां तव्हांखे हिकिड़ी मालूमात ॾींदुमि, जेके अखियुनि मां ॻोढ़ा बहनि था त उहे असांजे लाइ केतिरा फ़ाइदेमंद आहिनि या असां लाइ नुक़सानकार आहिनि। तव्हांखे अखियुनि मां ॻोढ़नि जे हवाले सां मालूमात ॾींदासीं त अखियुनि मां वहंदड़ ॻोढ़ा अखियुनि आलो रखण में मदद ॾियनि था, जंहिंसां अखियुनि मां खुश्की ऐं साड़ो ख़तमु थींदो आहे, ऐं ॻोढ़ा अखियुनि मां दज़ धूड़ मिटी ऐं ॿिया ज़रड़ा कढी अखियुनि खे साफ़ु कंदा आहिनि, ऐं ॻोढ़नि में लाइज़ोज़ाइम नाले हिकु केमिकल हूंदो आहे जंहिंमें एंटी माइक्रोबियल ख़ासियतूं हूंदियूं आहिनि, जंहिंजे करे उहो केमिकल अखियुनि खे इन्फेक्शन खां बचाईंदो आहे। ॻोढ़ा अखियुनि जे मुख्य हिसे कॉर्निया खे ऑक्सीजन ऐं गिज़ाई जुज़्ब फराहम कंदा आहिनि। रोइण वारो अमल दॿाउ वारे हार्मोन्स जहिड़ो कारेस्ट्रोल जे नाली नेकालीअ में मदद कंदो आहे, जंहिंजे करे रोइण सां राहत ऐं सुकून जो अहसासु फराहम थिए थो, ऐं ॻोढ़ा वहण जहिड़ी केमिकल जी नेकालीअ खे मुतहरक कंदो आहे, ऐं जेको मूड खे बहितर करे ॾुख या का बि तकलीफ़ खे घटाइण जो सबबु हूंदो आहे। मतिलबु त ॻोढ़ा तकलीफ़ ऐं ॾुख घटाइनि था। जज़्बाती तौरु वहंदड़ ॻोढ़ा आमतौरु ऐं पाण मुरादो तौरु वहंदड़ ॻोढ़नि खां मट हूंदा आहिनि, यानी अलॻि हूंदा आहिनि, छो त उन्हनि में दॿाउ वारी हार्मोन्स ऐं ज़हरील मवाद जो मक़दार वधीक हूंदो आहे, ऐं रोइण सां उन्हनि मादनि खे ख़तमु करण में मदद मिलंदी आहे। ॻोढ़ा वहण सां असाबी निज़ाम फाल थींदो आहे, जंहिंसां जिस्म खे आराम मिलंदो आहे ऐं जिस्मानी सूर घटिजण में वॾी मदद मिले थी। ॻोढ़ा अखियुनि खे साफ़ सुथरो रखण ऐं उन्हनि जी चमक बरक़रार रखण में बि मदद कंदा आहिनि, जेको अमल वरी डिघी ऐं तेज़ नज़र जे लाइ तमामु फ़ाइदेमंद आहिनि। ॻोढ़नि में मौजूदु ऐं ॿिया प्रोटीन ऐं साईं जा ॻोढ़नि में मौजूदु ऐं ॿिया प्रोटीन अखियुनि खे कुदरती तौर ते महफ़ूज़ रखंदा आहिनि, जंहिंसां इन्फेक्शन जा ख़तरा बि घटिबा आहिनि। ज़हरीली बैक्टेरियाज या जीत वग़ैरह जे नुक़सान खां बि हिफ़ाज़त थींदी आहे, ऐं इहे एॾा फ़ाइदा ॿुधण खां पोइ तव्हां थोरो अंदाज़ो लॻायो त जेकॾहिं कंहिं बि सबब जे करे इंसान जे रोइण वारो अमल कुदरती तौर ते न थिए हा त अखियुनि जे सिहत लाइ केॾा न कछाला करणा पई वञा। त साईं जा अखियुनि मां ॻोढ़ा वहण बि तमामु वॾा फ़ाइदेमंद आहिनि, के ख़ुशी मां ॻोढ़ा वहंदा आहिनि, के ॾुख मां वहंदा आहिनि, के जीत या अखियुनि में का शइ पइजी वेंदी आहे पोइ बि ॻोढ़ा वही वेंदा आहिनि, पर हमेशह ॻोढ़ो अंदरि जी ॻाल्हि हूंदो आहे, कॾहिं बि ईअं खाली रोइण सां ॻोढ़ा न वहंदा आहिनि। जेकॾहिं माण्हू अंदरि सां रोईंदो त बि ॻोढ़ा वहंदा आहिनि, जेकॾहिं दिलि सां रोईंदो त बि ॻोढ़ा वहंदा आहिनि।

ਸਮੇਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਪਾਏ त असो अज जो सवाल है त इंसानियत जो आलमी ढी कदें मल्हायो वेंदो आहे। जी हाँ समिन, इंसानियत जो आलमी ढी कदें मल्हायो वेंदो आहे। तव्हां असांखे इनबॉक्स में भी सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था, फेसबुक ज़रिए भी तव्हां असांखे सवाल जो जवाब मोकिले सघो था। ऐं असांजो मोबाइल नंबर आहे 0333221322888 ते बि तव्हां पंहिंजे सवाल जो सही जवाब असांखे मोकिले सघो था। त समिन, हिन वक़्तु असांजे स्टूडियो जे घड़ियल में पंहिंजो 10 पिया थियनि। असां वरी हिन वक़्तु हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक की तरफ़ ऐं कमर्शल ब्रेक की तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं। कॾहिं बि न वञिजो।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: ग्रेड 1 वी खां एक वी जे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है ग्रेड 1 खां 22 हारन बोर्ड अजला 37 12 28 29 30 अगस्त ते थेलो आ।

सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ के बानी के बिन दिनिया अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने जो हुकुम दई छो। अदालत पीटीआई बानी के इलाज ला मेडिकल बोर्ड जोड़ने जो हुकुम दींदे हेल ताई थियल इलाज जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरतो। मेडिकल बोर्ड फिजिशियन जनरल सर्जन इंटर्न मेडिसन आई स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल करने की हिदायत डॉक्टर फैसल सुल्तान और उज़मा खान के इलाज में शरीक रहने की इजाजत पीटीआई बानी से गर्भातियों के हफ्ते में एक भेरों मुलाकात ए पुटन से बेरा टेलीफोनिक गाल बोल कराने जो हुकुम सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करण बाबत बुधी जो लिखित में हुकुम जारी कर छो। अदालत है तो कैदी के जेल में होजन बावजूद इंसानी बर्ताव ए जरूरी तबी सहूलतों को हक हासिल है। पीटीआई बानी की सेहत बाबत जान सियासी फायदे ला इस्तेमाल न कर सकती। बानी के इलाज दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में को भी अवामी मेड़ न थी हुकुम की भंजकड़ी से डिन सहूलतू फौरी तौर वापस वी सकजन थी।

पीटीआई बानी जे जेल खां अस्पताल मुंतकली बाबत सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते जीअं जो तीअं अमल करण जो ऐलान कंदड़ हुकूमत जो यू टर्न फैसले खिलाफ अपील दाखिल करण जो ऐलान कानून वारे आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकली बाबति अदालती हुकुम जो नए सिर जाइज़ो वठण लाइ अदालत सां राब्तो कयो। जेलनि में केतिरा ई क़ैदी आहिनि जिन सां सिहत जा मसला आहिनि, छा सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम सभिनी क़ैदियुनि लाइ हूंदो? कानून मूजिबि मेडिकल बोर्ड फ़ैसिलो कंदो आहे त क़ैदी जो इलाज जेल अंदरि या ॿाहिरि करणो आहे। उन खां अॻु वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो त पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते जीअं जो तीअं अमल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म वटि अदालत जे फ़ैसिले जे उबतर को बि इख़्तियार नाहे। राणा सनावला बि चयो त सुप्रीम कोर्ट मेरिट ते फ़ैसिलो ॾिनो आहे।

0: सोलर है बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में तेज जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
1: ये जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ी असां जे हारीअ साईं ताहिं आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयारु कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: सिंध धरती के मतवाले हम मीरपुर खास वाले
4: सालियाना जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंशाल्लाह सरावल 1448 हिजरी ब मुताबिक 21 अगस्त 2026 जुमे जी शाम छंछर जी रात बाद नमाज मगरिब ओठ हाजी मोहम्मद उर्स खास खेली यूसी सिंध के सिंधड़ी जिले मीरपुर खास में मुनक्कद कयो वियो आहे जेमे खुसूसी खिताब अल्लामा मौलाना इमाम बख्श हिंगोर जो सिकंदरी साहब करण फरमाइंदा ज़ेरे सदारत अल्लामा हाफिज मोहम्मद कासिम चांडियो सिकंदरी साहब ज़ेरे निगरानी मोहम्मद अकरम राहिमो सिकंदरी साहब सबनी आशिकाने रसूल के हिन मिलाद में शिरकत करण जी दावत दिजे थी पारा मिलाद कमेटी अली गुल खैर मोहम्मद खास खेली अवां जे पेंजे शहर मीरपुर खास में एक डीं वारी मुफ्त फिजियो थेरेपी कैंप तारीख 23 अगस्त आचर जे डीह सुशा फिजियोथेरेपिस्ट करंगे जे हडिन जो सूर कंध जो सूर कुल्हन जो जाम थियण लकवा फालेज हलण में दुखियाई चेल जो सूर गोडन जो सूर ऐं ऑपरेशन खां पोइ जे लागापियल मरीजन जो बज़रिया फिजियोथेरेपिस्ट कंदा नोट सूमर खां जुमे ताईं मंझंदि 3 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं छंछर ऐं आचर ते सुबुह जो 10 वॻे खां मंझंदि 2 वॻे ताईं OPD एड्रेस नसीम सेंटर साम्हूं इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज लालचंदा बाग मीरपुर खास राबते जे लाइ फोन नंबर 0313-3141-551
5: इस ऑफर से पाई जबरदस्त कनेक्टिविटी वो भी सिर्फ 270 रुपए के लोड में विद जैज 5G अभी ऑफर हाके *9277# डायल करें शराय तो जवाबित लागू है

0: जिगर पेट के तमाम अमराज और शुगर की वजह से पाँव में हो जाने वाले मरीजों का हर बुध दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं। एड्रेस अल शफा मेडिकल न्यू टाउन मीरपुर खास। मजीद मालूमात के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02-87-44-05।
1: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा एवोकाडो अवहां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खान

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

साईं जा चवंदा आहिनि त पाणी हेठां ईंदी ईंदो आहे ऐं पाण खां ताक़त वारे जे मथां कावड़ चढ़ंदी नाहे ऐं पंहिंजो जेको हेठां ई वारो माण्हू हूंदो आहे ग़रीब मिसकिन हूंदो आहे उन तां कावड़ लहंदी नाहे। पर अक्सर ॾिठो वियो आहे त मर्द जेके हिन पंहिंजी कावड़ जेका आहे उहा औरतुनि ते कढंदा आहिनि। पोइ सबबु खणी कहिड़ो बि हुजे जेकॾहिं ॿाहिरां जी कंहिंसां बि अणत बणत थींदी तॾहिं बि घर जी कावड़ औरतुनि तां कढंदा, चाहे उहा धीउ हुजे, ज़ाल हुजे, अमड़ हुजे या भेण हुजे। मर्द जे हर हकी तोड़े नाहकी कावड़ जो शिकार बि औरत थिए पई। ऐं मामूल खां मामूली ॻाल्हि कावड़ में अची कंहिं वॾे नुक़सान ते बि माण्हू पहुची सघे थो। ऐं ग़लति इहा ॻाल्हि हुजे त बि का पंहिंजो मुआशिरो बहरहाल असांजे मुआशिरे में औरतुनि सां ॾाढ बदसलूकी, तशद्दुद ऐं मौत जहिड़नि वाक्यनि जो बुनियादी कारण कावड़ आहे। रवैयनि जो बुनियादु समाजी अण बराबरी थी आहे ऐं समाजी अण बराबरी जो बुनियादु जाहिलाणा रवैयनि, सोच ऐं रस्मनि ते आहे। जेकॾहिं समाज जी हिकिड़ी लॻातार अमल सां पंहिंजो ठहिया आहिनि त ग़ुलाम रवैया, सोच, ग़ुलामी जी तवक़ कंदा। इहो तसलसल हज़ारे सालनि जो आहे। उनखे ख़तमु करण लाइ हिकु त समाजी निज़ाम जो औरत मर्द जे फ़र्क़ खां सवाइ पिणु मज़हबी अक़ीदनि खां मथां बराबरी जी बुनियाद ते कानून ऐं इंसाफ़ ते बीठल हुअणु ज़रूरी आहे। ॿियो सॼो समाज जो तालीम याफ़्ता हुअणु घुरिजे त असां जेके हिन कावड़ वारी जेका जिहालत आहे ऐं ख़ासि करे असां इहा कावड़ औरतुनि ते कढूं पिया, इहा सरासर ग़लति आहे।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स.
0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

जी हाँ समेन अवां जे इंतज़ार जो घड़ियूं ख़तम जेको अवां असांखे टाइम ॾिनो ॿिनि कलाकनि जो ऐं तव्हां असांजो वेही प्रोग्राम ॿुधो अवां जा लख कुर्ब त समेन असांजे अॼु जे सवाल जो सही जवाबु हो इंसान जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे त इहो आहे 19 अगस्त ऐं असांखे दोस्तनि जिन बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे उहे दोस्त हुनजा नाला खणंदा हलूं उस्ताद ग़ुलाम नबी सुमरो ऐं उज़ैर सुमरो मीरणी चांडन खां ऐं फ़तेह अहमद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद कनासरो बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो घोट सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां हाफ़िज़ नईम लाइ हाफ़िज़ अमीन लाइ काज़ी सुमराणी ईंदड़ पनवाकिल खां अज़ीज़ सोलंगी भुटो सोलंगी ऐं नूर अहमद सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां सोराब मंगरियो ॻोठु सचे ॾिणो मंगरियो लॻ बकापुर खां हाफ़िज़ मुनीर अहमद खोसो लाडकाणे खां ख़ालिक लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां ऐं महरम अली टांवरी ॻोठु सिजावल जूणे जो लॻ हुनजो ॻोठु आहे लियाकत खखराणी उन सां गॾु आहे अंबर बुरड़ो दिलबर बुरड़ो लाडकाणे खां नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां भाउ जे बि सवाल जो जवाबु सही हो मोहम्मद शरीफ़ छुटो दरेजी बलोचिस्तान खां क़ुर्बान ख़ासकली झंडे मरी खां चनेसर बेहण आज़ाद बेहण शहर मोरे खां फौजी पठाण खोसो ऐं मोहम्मद कासिम पहवर फुलजी स्टेशन खां इमाम बख़्श सोलंगी मटियारी खां अब्दुल गनी जूणे जो सुल्तानपुर खां फहद लाशारी आशिक़ ख़ासकली मोहम्मद अली जमाली हिज़बुल्लाह जमाली नवाब शाह खां बरकत अली जमाली अली हसन जमाली ॻोठु हाजी ग़ुलाम नबी जमाली बलोचिस्तान खां मोहम्मद ख़ान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार मोहम्मद अली कुंभार हाले पुटा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी ॻोठु मोलिर निमाशी लॻे वॾनि मरण खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख्तियार अली ऐं ज़हीर अब्बास सोलंगी वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठु कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर ॻोठु हसूजतुनि खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई मोहम्मद कासिम चांडियो ॻोठ खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर हसन अकबर फहद अकबर अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टाप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़ौजी इरशाद अली मैसर फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई निसार अली जतोई हरसा जी गढ़ी कोरकाणनि खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी तसमीन अवां दोस्तनि जे नाह कयूं पिया ख़ूबसूरत नगमो

अमेरिकी सदर अपना हरमुज के अमेरिकी इलाइको करार देने वारो नक्शो शेयर करे छो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हरमुज बाबत नक्शो पेंजी सोशल मीडिया अकाउंट सोशल ट्रुथ थी शेयर कर तजिया निगारन ईरानी क्यादत पारा वाशिंगटन के मीठे मयार से तनकीद।

हिकु भेरो ॿीहर फ़ौजी एक्शन खां सिफ़ारतकारीअ जो वक़्तु अची चुको आहे। असां ते दॿाउ विझण सां अमेरिका रिआयत हासिल नथो करे सघे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाफ चयो आहे त अमेरिका उहे रिआयतूं हासिल करणु चाहे थो जेके इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती यादनामे में पीठ हेक्सेत ऐं बेस्टन पंहिंजी औकात खां वधीक ॻाल्हाए रहिया आहिनि। मश्करनि जी टीम करिश्मो नथी ॾेखारे सघे।

0: साईं घोट की वेझो कार इल्ज़ाम हेठि बिटो कतल जवाबदार मुड़ुस ज़ाल ऐं नौजवान खे गोलियूं हणी फरार थी विया। घोट मलूक शेख में जवाबदार खावन बख्श शेख ज़ाल मलूका ऐं नूर हसन शेख खे क़तल करे छॾियो। वाके बाद जवाबदार फरार थी वियो। पुलिस पहुची लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कया।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अना भी शानदार।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर
2: सिंध धरती जा मतवाला असी आयो मीरपुर खास वारा।

5 अगस्त इतवार के दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर कोमल तारे फिजियोथेरापिस्ट और डॉक्टर सरफराज शाह फिजियोथेरापिस्ट मोहरों का दर्द, गर्दन दर्द, कंधे का जाम होना, लकवा, फालिज, चलने में दुश्वारी होना, कमर दर्द, घुटनों का दर्द और ऑपरेशन के बाद मसाइल वाले मरीजों का बजरिया फिजियोथेरापी मुफ्त इलाज करेंगे। नोट, पीरता जुम्मा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, हफ्ता और इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी करते हैं। एड्रेस, नसीम सेंटर नजद इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज, लालचना बाग, मीरपुर खास। राब्ता के लिए फोन नंबर 0313-3141-551। सालियाना जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह छरजी रात बाद नमाज मगरिब कोठ हाजी मोहम्मद उर्स खास खेली यूसी सिंधड़ी ताल के सिंधड़ी जिले मीरपुर खास में मुनक्कद कयो वियो है, जैमे खुसूसी खिताब अल्लामा मौलाना इमाम बख्श हिंगोर जो सिकंदरी साहब करण फरमाइंदा, जेरे सदारत अल्लामा हाफिज मोहम्मद कासिम चांडियो सिकंदरी साहब, जेरे निगरानी मोहम्मद अकरम राहिमो सिकंदरी साहब। सभी आशिकान रसूल के इन मिलाद में शिरकत करण की दावत दिजे थी। पारा मिलाद कमेटी अली गुल खास खेली, खैर मोहम्मद खास खेली।

0: हैदराबाद की मशहूर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुएब शेख। शुगर वाले मरीजों का हर बुध दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं। एड्रेस: अल शफा मेडिकल सेंटर, न्यू टाउन, मीरपुर खास। मजीद मालूमात के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02338744405।
1: अगर खूबसूरती खपे तो आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐ एवोकाडो अवां जी बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ऐ निए शानदार मिरेकल ग्लो, कुदरती चमक ऐ निखार जो बेहतरीन इंतखाब। आर्च ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
2: अगस्त 2026 अंगारे जे दिन सुबह जो 10 वगे खां मंझंद 3 वगे ताई लगी रही आहे, जेमे डॉक्टर असद अजीज, MBBS MS आर्थो, आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी ऐ जोड़, गोडन जो सूर, चेल जो सूर, कंध जो सूर, अर्कुन निसा जो सूर, पैदाइशी पेरन जो टेडो हुजण, टुटल बाह ऐ टंग ऐ हड्डियन जी कमजोरी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो। हंध ज़ैनब मेडिकल सेंटर, डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल, वेझो सोढ़ा फ्लोर मिल, 7G रोड, खिपरो। नोट: डॉक्टर साहब हर अंगारे ते OPD कंदा। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर्स 0305-327-6608 आई 0344-349-8896।
3: आंखों के सबसे बड़े दारे के सफेद मोती का ऑपरेशन, बजरिया लेजर फेको, काले पानी का इलाज और ऑपरेशन, पर्दों की बीमारियों का इलाज और आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक। इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं। एड्रेस: सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेजर आंखों का अस्पताल, सर सैयद रोड, गरीबाबाद, मीरपुर खास। फोन नंबर 0303-261-7077।
4: खुशखबरी। हाने अमा के परेशान थेने जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तहां के भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वई आहे, त उन बाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केते एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306-244-7700।
0: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी, आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जे मीरपुर खास FM 88 की आवाज। पारकबाद मिलाद, जलसा, स्कूल, कॉलेजेस, ब्यूटी पार्लर्स, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, जनरल और मेडिकल स्टोर्स, बुटीक, गारमेंट शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, ज्वेलर शॉप्स, अस्पताल, फ्री मेडिकल कैंप्स, NGOs, फूड पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स, शोरूम, ऑटो शॉप्स, हाउसिंग स्कीम्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, सकाफती मेला, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन, शादी हॉल, मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स, सीड कॉर्पोरेशन, सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को चार चांद, वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में। तो अभी राब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर, मोबाइल नंबर 0332724301 और 0333722071।

0: मेहरान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GFM 88
1: नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

0: की खजूर,
1: सिंध का बढ़ाती है मान,
0: सखर बैराज की शान,
1: और अब आवाज की सूरत बनी है
0: सखर की एक नई पहचान।
1: जीए सखर FM 88,
0: सखर की आवाज।
1: जीए FM 88,
0: सिंध की आवाज।

0: सखर सिंध का राज दुलारा शहर,
1: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
0: सखर के हर अंदाज से बसी आवाज, जीए सखर FM 88, सखर की आवाज,
1: जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। यू आर शेयरिंग इन टू डियर रेडियो एफएम 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनली, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज। कैसे हैं आप? आई होप सो कि जहाँ जहाँ भी मौजूद हो बिल्कुल टिप टॉप से कूल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं। पूरी पूरी एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, क्योंकि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपको मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी है सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। और वो तमाम तो लोग जो लोग यहाँ सालगिरह हैं उनको कहेंगे मैंने मनी हैप्पी रिटर्न सैटरडे हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बना, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस। इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और शोदारों, शहरों और शराहों, वादी और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे वरिष्ठारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबा बखेर आगले जी आयानी गुलजार है। प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करेंगे वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: 9:30 AM. This time check is brought to you by. अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम. It's 11:30 AM. This time check is brought to you by. अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एंड रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
1: सालियाना जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंशाल्लाह 7 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी ब मुताबिक 21 अगस्त 2026 जुमे जी शाम छंछर जी रात बाद नमाज मगरिब गोठ हाजी मोहम्मद उर्स खास खेली यूसी सिंधड़ी तालके सिंधड़ी जिले मीरपुर खास में मुनक़द कयो वियो आहे जंहिंमें खुसूसी खिताब अलामा मौलाना इमाम बख्श हिंगोर जो सिकंदरी साहब करण फरमाईंदा ज़ेरे सदारत अलामा हाफिज मोहम्मद कासिम चांडियो सिकंदरी साहब ज़ेरे निगरानी मोहम्मद अक्रम राहिमो सिकंदरी साहब सभिनी आशिकाने रसूल खे हिन मीलाद में शिरकत करण जी दावत ॾिजे थी पारा मीलाद कमेटी अली गुल खास खेली खैर मोहम्मद खास खेली
0: खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ दार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक ऐं निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड आमों की सरजमीन
2: सिंध का शेयर
3: प्रोडक्ट की मशहूरी थी तपोए अवां वट आहे मौजूद जीए मीरपुर खास FM 88 जो आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद जीए मीरपुर खास FM 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास FM 88 वधीक राबते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 0332-2724-301 0333-3722-07
0: मीरपुर खास की आवाज
4: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ

0: करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सा पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह
1: मस्त धरती
2: फातिमा मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: ओके किसको डेडिकेशन है?
1: जानू मन थोड़ा गला खराब था ना तो इसी वजह से थोड़ा इधर उधर पूरे हो गया.
0: इधर उधर मुझे मुझे तो नहीं लगा कि इधर उधर हुआ है.
1: वरना मैं बहुत सुरीली हूँ जानू मन.
0: नहीं अभी भी आपने कम मतलब बुरे सुर नहीं लगाए, काफी अच्छे सुर लगाए. थैंक यू सो मच. आपका गाना प्ले कर चुकी हूँ, उसने एंजॉय करें अपना बहुत सारा ख्याल.

0: और कॉलर लेने जा रहे हैं और कॉलर हम चेक करेंगे कॉर्नर कहाँ से है. नेक्स्ट हेलो हेलो
1: लाड़कहाँ से लियाकत अली बात कर रहा हूँ.
0: लियाकत अली भाई कैसे ठीक ठाक
1: अल्लाह का करम.
0: अच्छा मुझे बताएं
1: कैसी हैं. ठीक है
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताएं गाना सुनाएंगे.
1: जी जी
0: सुना दे.
1: एक बार मिलो हमसे तो बार मिलेंगे हम जैसे कहा तुमको तलब कार मिलेंगे. एक बार मिलो हमसे.
0: ओके वेरी नाइस. किसी को डेडिकेट कर रहे हैं.
1: मेरी प्यारी बहना आज जी रुखसार.
0: ओके जी थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.

अभी जिन लोगों ने मैसेजेस और कमेंट्स कर दिए हैं उन लोगों के हम मैसेजेस और कमेंट्स को भी जरूर इंक्लूड करेंगे. तो मैसेजेस और कमेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे. तो जिन लोगों ने हमें कर दिए हैं वो थोड़ा सा सब्र कर लें, हौसला कर लें, ठीक है. और हमें जिस गाने की रिक्वेस्ट आई है वो हम प्ले करेंगे साथ साथ. और इसी के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक और फिर हम दोनों को दोनों के बाद वापस आएंगे. क्या हो गया मुझे, दोनों के बाद वापस आएंगे. और फिर जब हम दोनों के बाद वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बोलो तो माने. बोलो तो माने में एक अदर टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखा रहे होंगे. तो गाना गाने के साथ न्यूज प्लस फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

इस्लामाबाद है रावलपिंडी में तेज बारिश नाले पानी बरसाती सूरत के मुंह देने वासा है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: मीरपुर खास की हो तो आवाज भी।
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
3: सालियाना जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंशाल्लाह 7 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी ब मुताबिक 21 अगस्त 2026 जुमे जी शाम छंछर जी रात बाद नमाज मगरिब गोठ हाजी मोहम्मद उर्स खास खेली यूसी सिंधड़ी तालके सिंधड़ी जिले मीरपुर खास में मुनक्कद कयो वियो आहे जेमे खुसूसी खिताब अलामा मौलाना इमाम बख्श हिंगोर जो सिकंदरी साहब करण फरमाइंदा।